0: Now, therefore, the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations.
1: कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा
2: गले में खिंच खिंच विक्स लो विक्स में 6 औषधि तत्व हैं जो खिंचखिच हटाए तो जब भी गले में खिंच खिंच हो विक्स लो
3: गले में खिंच खिंच गले

0: हैदराबादी पोयम।
1: जानी जानी क्या रे अब्बा, शक्कर खा रहा रे जलील, नहीं रे अब्बा, झूठ बोल रहा रे माके लोड़े, नहीं रे अब्बा, मुंह खोल रे मैया के लोड़े।
2: The Arabian humpback whale is unique in all the ocean.
3: They do not migrate.
2: They are a remnant population.
4: They have language all their own. Listen.